वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खुशां दे जकारे जावे, निहाल जावे, सत श्री अकाल, गोर बरकाल।

हैं गौण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी धनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खड ओ भौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई पसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान ओ अहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र

मोदी अगुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा और कांदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव है पांचों संग बरंगन लाव है बैरारी कर नाटी धरी गवरी गाव है आसावरी तेह पाछ सिंध भी अलापी श्री राग सिंह पांचों थापी।

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हारी गज गद हा विभूत दारी गिद्वा मसान बास करियो करत है। गुकमट बास लग डोल दऊ दास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है।

भूत बन चारि छित छौना सबे दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के मछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बटैया देत बगुला बिडाल वृक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे असना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नभ के उड़ैया सो चिरैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कह आदस फिरैया दे तो भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई दे चंद्रमा सिवैया को

बैरागी बन का बहु सन्यास भेष बन के दिखावई, कहू बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी, कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई, कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी, कहूँ दंडधारी हो के लोग न भ्रमावई, कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर ओ गदहा अनेक दा पुकार ही, कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाकु ठारन सो मार ही, कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही, डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही, ताप के सहित जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है, जाप के कियत जो पे पायत अजाप देव पूतना सदीव तुही उचरत है, नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है, आग में जरत कतराण की परत कर।

करीम सोई रास कर रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही कि सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देह राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देश।

जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फेर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, दही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उन को करत भज, केते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज, के तक व्रता।

न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न फर्मं न जन्मं न जातं द्वैखंग विखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशी अचेतं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय सारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परेयं परापरं पूर्ण प्रकाश।

न नेहं नगे हंस नेहंस नाथे उदंडे अमंडे व्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नीय छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय निर्भय।

दैत बानी कहूं जा छकंद्रव किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हूं कहूं जोग विद्या धरे तापसी हूं कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जाछ विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं मद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूप।

क्या कहूं देव वाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बाणी कहूं गारडू गूड कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजंग धीराज अधिकारी।

सन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम बरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतबान, जय जात पात नहीं शत्रु मित्र, जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम थाव नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं शत्रु साध, जय त्रास वास नहीं देह नाश, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल प्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखय।

कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे आद गरम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सोभरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र तुचरत सुकरम न्यौली याद कर।

कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई जगन ताप कई जपत उर्द लडकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान भव करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन। त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम्पह जुगण जोह जुअंग भय कम्पह मेर पयाल भुअंग तप तापस सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र।

जमीन जमाजे रचें सर्व मकी नमका जेह राग न रूप न रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भयं जे खेद न भेद न छेद छयं जेह जात न पात न मात पितं जे रचयं छत्री छत्र शितं जेह राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखण सचयो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद रगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव बेव नरंग नरपाल रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद भुजंग किये देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जात न पात न जोत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न सोग न भोग भुअंग जे जम्पह किन्नर जछ जुअंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाजर थादिक पांद गणं भव भूत भविख भवान तुवंग जेहे अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरा काश निवास चितंग रज रोजे कादेश चंद्र पृतंग दुध चंद दिनी

बाद चिहन भरण है, अधेक से गभेग है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्व भरण है, जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अभेक है, लेखनाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख अनमानिए, न जंत्र में न तंत्र।

संग जोत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन ओ मकान अप्रमाण तेज मानिए, न देह है न गेय है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है, न दात है न मात है, न अंग है न रंग है, न संग है न सात है, न दोग है न दाग है, न द्वैग है न देह है, न सिंह है न चार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संक है, न जच है न गंध।

है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेद है न दात है न मात है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंक है न भूप है परे है पवित्र।

न शीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है।

अगस्त आदि जे बडे तपस्त पे पिछे किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पे किए अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोदा है स्व प्रसाद रुआ मल छंद रूप राग नारे।

सन कौसन केस नंदन पावहि नहसेब। जच किन्नर मछ मानद मुर्ग उर्गा पार, नेत नेत पुकारहि शिव सकर ओमुख चार। सर्व सबद बतार के दर जप ही जह जाप, आद देवा गाद तेजा नाथ मूर्त ताप। जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन, सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन। जाछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसन के बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध उर्द न भूमा का सनूप। जात जन्म न काल कर

चक्र जहन ना वर्ण जा को जात पात ना भेद रूप रेख ना रंग जा को राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद दयाल स्वामी आदि देवापाल दीन बंद प्रवीण श्री बद सर्व को करतार वर्ण जहन ना चक्र जा को चक्र जहन आकार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को बरन दुष्ट गंजन शत्रु।

दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले थले मैं जब जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र ओम मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत वे मुखचार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल जो चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सफा कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोद सोद थके महासुर पायो नह पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विथ तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है।

कहो सुसम का सो कह दम को कहाँ कहांत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्व है तवन दोहरा कवन ऋष को पुष्ट है।

दुर्जन दल दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद वृते चरासुर मारण पति दोदारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रंभक वर्दन छत्र चिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप तेजंडा सुरचंडन मुंड विहंडन धूम्र

चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंगन तुजा परंगन फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हुसी मैं कासुर मर्दन भूमा का तल उर्द थे दामनी प्रहासन सुछव निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुड़।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय होशी सब ठार निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटी निवारण नदम उदारण तेज प्रकरण दुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क पितर कंठ पद

दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रत निशुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन।

घंट का विराजे रुण जन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल बिक बाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मंथन रिज सबन भजे रोहरणंग जय जय हो सीमा खा दुर्मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदन संप्रलय प्रजुन संजग।

खत्रियान खतंगीय भय भंगीया दनंगीय गादगते ब्रिडलाज बेहंडन चुर दंडन तेज प्रचंड वारण थोक हरे जय जय हो सीमा खासुर मार्दन बेसो विदुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे दुलबले दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रदर खंड पितल तले अष्टायुध बाहन भूल निबाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद अनाथ अगाध वृते दुख दुख प्रवचन से

0: अत्रके चलैया चित्त छत्रके धरैया छै बदलिया के चलैया महासत्यम के सहलाया न दलैया के दिवैया मन के सान के अढैया के बसान के दिवैया के पटैया जाम जान है दिवैया के दुध जय बचैया हम दुध के मिटैया मन के बोध के दिवैया मन के पानी हम के मन बोध के दिवैया हम के ज्ञान हम के बुद्ध का के दाता देव काल दम के बाद दाता काल हम के काल दम के काल महाकाल हम के काल पूर्वी न पार पावे गुलाह है मबूद है गुण गा दे जी गुण गा वे दे रे गुण गा जो के जो न पार पावे साधना के दे जो बंदे यार दे बंदे यार दुनिया न दे दे दे यार बंदे यार दुनिया न भर के फिर अंगी माने अंधारे को पता के बिन चमक के बिन छमे बिन से के का बात है के बटा मन के लदे दे मन होता वर सरकार के दे दे के लंगे बहे चन धर्म रहे दे बिन बहे के बहे चन धर्म नाम है बंग के बंगाले फिर हंग के फिर मंगाओ के बंगाले बिल वहन तेरी जान के मां चल दे के करो वट के मेल के मां चले से मन के ओले वीर बन के श्री बंद के पाप बंद को मोला पंग से अंत के पाप को भाग को मंगता वे जिन मछी ने के से को भाग में देव के दे के दे के दे के दल के भाग दे आए तो इंद्र के ने पूर्ण न करता पायो प्रभु आनंद को ब्रह्म प्रभु लो के पावे लो तरह है धाम पर को सब पता है देव देव दान को सुरेश दान देव देव दान को सुरेश को आवे सदा को मत जाना दान को भी सदा रूप में भरा भी नंग और काम को भरा नंग रूप सदा भी नंग और तब है नदी के साथ सदी आई है नहीं पार है नंग मुझ में आप पार सदी के पिता के लोग दान है मैं पार पार ही करता है वो हदी की बार पर ही ये बह जाता है जो कर भी नंग पर जब पहले ये दुनिया जिन्हें ते जो द्वार के ब्रह्मा पहुंचा ते कृष्ण अवतार के तरह जा रही है कृष्ण अवतार सब सरदार सिंह के सूरज भगा सिंह के सभी अवतार सिंह जो द्वार राजा की तरह जा रही है अवतार ते मनी ने कहते व्यास से प्रवीण ते घूमे कुली ने से प्रवीण ते घूमे कुली ने कुली ने कहते जाज में नहीं पूर्ण नो का बाबर ते हर ताई ते बाबर ने रात बाबर लाई ये ते है बाबर ने रात बाबर लाई पूर्ण नो का ने रात बाबर है ना पार बाबर पाई ये ने पार बाबर ने पार के बाबर पाई ये ने आदो वेरा पैर से पर पूर्ण नो का से मेरा रूप हूं कर पूर्ण है अपना से के मानी है ना से है ना से के मानी है जंत्र हूं जात जा की बाप हूं न मारे दर की पूरा जंत्र बाप झंडा माया न मंगू ये ने प्रेम जो स्वतंत्र है राज नहीं है जंत्र जो के मोह में को के राज नहीं को जंत्र है न मोह में को मत है तेज हूं को दा नहीं है राज जी को सारे न को शुद्ध दर को है राज के शुद्ध दर के साथ है न को मन में खान दे का साधना के साथ है विरक्त तन के साथ के बुद्ध को उतार है के बाद के बुद्ध को उतार है सुंदर स्वरूप है के वो मन को वो बहन कर रूप रूप कर रूप है को मत को वरण कर रूप है दी रूप को तब को नहीं मन को गावी न तो बन को रचनी में को न गावत है साहस है को तक के सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के बुद्ध को बहुत है बुद्ध को से बोल रहे हैं सिर्फ को हम को को इंद्र ने के को विभूत है हम दा हम को निंदन कर रहे हैं को तेज को कारण सी मन है बाल हम को का है का सदुरण के साल भाग है हम के को को को है करुण तथा के बाजी है ने जो को को चंद्र है के तेज को तन जो के मोह बनि को मत रहे जो पूर्ण प्रकाशी है
1: हर सहला बने रहे हम फकर से हाजी पुर देख लो मोनिया हर सहला हाजी पुर
0: ਪਾਪ

0: माता अंदर ही गोल हो जाए।
1: अंदर आवाज आवे आज पूरे नमे जुगाद
0: नहीं कहते अंदर आवाज आएगी कहते अंदर आवाज आएगी आज पूरे नमे जुगाद पूरे नमे केंद्र के ना अंदर माता ने बोलना कर दी बिच्छू अंदर अंदर आवाज आएगी आज
1: माइक चल गया चलो
0: चुप चुप चुप जो बाबा जी वाहेगुरु जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी गौरी सुखमनी।

0: सिमरत किस बिगन
1: प्राप्त कै सिमरन आंदेन जागे
0: प्राप्त कै सिमरन भो न व्यापे
1: प्राप्त कै सिमरन दुख ना संतापे
0: प्राप्त सिमरन साध के संग।

0: प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा,
1: प्रभ के सिमरन पूरा नासा,
0: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नाम रेत माए समाए,
0: प्रभ जी बसे साध की रसना।

0: प्रभु सिमरे से सुखवासी
1: प्रभु सिमरे सदा विनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: मानव जन के मंगल वाला
0: प्रभु सिमरे से पर उपकारी
1: प्रभु सिमरे तिन साथ बलियारी
0: प्रभु सिमरे से मुख सोहावे
1: प्रभु सिमरे तिन सोख बिहावे
0: प्रभु सिमरे तिन आत्म जीता।

0: और चिमरन कर भगत
1: प्रभ
0: के चिमरन कबो न छूरे प्रभ के चिमरन हर गुण बानी
1: प्रभ के चिमरन
0: प्रभ के चिमरन ने चलिया
1: प्रभ

0: भगवान बेसराम
1: हर का नाम दास की योग
0: हर का नाम उदय जन को
1: हर जस करत सन दिन रात हर जन के हर नाम निदान मंथन रंग रते रंग एके हर का नाम जन को मुकुट जुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर का नाम जन की वडियाई हर का नाम जन को भोग जो जन राता हर नाम की सेवा हर हर जन के मार खजीना हर हर जन के ओर सतानी ओत पोजन हर रस राते आठ पैर जन हर हर जपे हर की पगत

0: कनक सावा भोगा
1: जोली करम करे बो आसन
0: जैन मारा सांझा मा साधन
1: सिर कटावे
0: मैं ना जावे
1: हर के नाम संसर किच नाही
0: नानक गुरमुख नाम जपत।

0: को वो साधना करे
1: मनते कबूला विख्या करे
0: जल दोवे वो देनी
1: सुत का है काचे वे
0: मन हर के नाम की मैं माऊच
1: नानक नाम उदय पदे पौमो
0: बहुत श्याणव जम का पौ व्यापे देखने कगन नहीं बुझे झूठस नाई हूँ प्यार कबर पर तू सगली जमडा ने हर का नाम

0: हर को नाम जब निर्मला
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: सगल
1: उद्यम में उद्यम पड़ा
0: हर का नाम जपो जी
1: सगल वाणी में अमृत।

बिरध ब्या ऊपर साख से ये निर्गुण गुण कछु न बूझे जय प्रसाद तारू पर सुख बसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला जय प्रसाद भोगे सब रसा।

जो छटना सो अस्थिर कर माने, छोड़ जाए जिसका श्रम करे, चंदन रेप उतारे तोए, अंधकूप में पति विकराल, करतूत पशु की मानस जात, बाहर पे अंतर मरमाया।

क्या पिंगल पर्वत पर भवन करतार करुणा में दीन बेनती करे संग सहाय सुहावे नची बलुआ के ग्रह भीतर बसे दृढ़ कर माने।

जय प्रसाद बसे सुख मंदिर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना जय प्रसाद रंग रसो जय प्रसाद पाठ पटम भरावे जय प्रसाद सुख से सोई जे जय प्रसाद तू सब को माने।

0: जय प्रसाद तुझको न पोचे जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे जय प्रसाद भूखन पैरी जय प्रसाद सस्ते सवारी जय प्रसाद बाग मिलक तना
1: अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: बैठा सात
0: इसे त्याय जो

0: सात के संग बुझे प्रभ ने
1: सात संग सहोल त्रिवे
0: सात के संग पाए नाम रतन
1: सात के संग एक उपाय जतन
0: सात की महिमा बरने कौन परानी
1: नाम है सात के स्वभाव प्रमाय समानी
0: सात के संग गोचर मिले
1: सात के संग सदा पाए खुले
0: सात के संग आवे बस पंचा
1: सात संग अमृत राज पंचा
0: सात संग होए सब की
1: सात के संग मनोहर बैन
0: सात के संग न कतू दावे
1: सात संग सिद्ध मन पावे
0: सात के संग माया ते पिन
1: सात संग नानक प्रासो प्रसन्न
0: सात संग दुश्मन सब मी
1: साधो के संग महापने
0: सात संग किस्यो नहीं बै
1: सात के संग ना बेगा पै
0: सात के संग नाई को मंदा
1: सात संग जाने परमानंदा
0: सात के संग नाई होता
1: सात के संग तजे सवा
0: आपे जाने साध बुढ़ाई
1: नानक सात बने आए
0: सात के संग न कबू दावे
1: सात के संग सदा सुख पावे
0: संग बस गोचर रे
1: साधो के संग रस है
0: सात के संग बसे थान ऊंचे
1: साधो के संग महल पहुंचे
0: सात के संग जुड़े सब
1: सात के संग केवल पार ब्रह्म
0: सात के संग पाए नाम निदान
1: नाम है साधो के कुलवा
0: सात के संग सब कुल उदारे
1: सात संग साजन ये कुटम ने सारे
0: साधु के संग सो तन पावे
1: ये तन ते सब को वसा सात संग समुदाय कर सेवा
0: सात के संग
1: सुभाषो देवा
0: साधु के संग पाप नयन
1: सात संग अमृत गुण गाय
0: सात के संग सर्व खान गम
1: नानक सात के संग सबा जरम
0: सात के संग नहीं किचका
1: दर्शन भेटत होत निहार
0: सात के संग कलू खतहरे
1: सात के संग नरक पर हर
0: सात के संग इयाऊ सुहेला
1: सात संग बिसत हर मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे
1: सात के संग अमृता जावे
0: पार ब्रह्म साधी सुबसे
1: नानक कुदरे सात सुन रसे
0: सात के संग सुनो हर नाओ
1: सात संग हर के गुण गाओ
0: सात के संग न मन ते बिसे
1: सात संग सब पाने सरे
0: सात के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग गड़गड़ डीठा
0: सात संग बे आजा कारी
1: सात संगत पै हमारे
0: सात के संग मिटे सब रोग
1: नाम है सात बेटे संजो

0: ब्रह्म ज्ञानी सबल सगल की रीना
1: ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म ज्ञानी
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा

0: मरे को ऐसा
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: की मत होए बिना
1: कर्म करत होवे न करम
0: काऊ
1: फल की इच्छा नहीं बचे मन तो अनंतर सिमरन गोपाल आप जुड़े अवरे नाम जपावे भगत जी भगवान भगत का रंग
0: त्याग
1: मन दे बिन से सगला परम
0: कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: सास संग पापा मर खोवे
0: भगवान
1: की टहर करे
0: हर
1: के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम सा रस पीवे
0: पंडित

0: चैन पाइए चरम
1: जिसके
0: मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सतराम
0: आत्म राम किस नजरी आया।

0: जैसा सुरंग जैसी उस माटी,
1: जैसा मैं जैसे बेखाटे,
0: जैसा मान कैसा अभिमान,
1: जैसा रहता सारा जान,
0: जो बरताए चाही जुगत
1: नाना को पुरा कहिए जीवन होगा
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ।

0: कोई
1: आपे आमानंद
0: यही कोट पार ब्रह्म के दास कई कोट तत् के बेटे कई कोट नाम रस पीवे कई कोट नाम गुण गावे
1: आत्म रस समावे
0: अपने जन को सास सास

0: वो लश्कर मानुक ऊपर करे यार
1: पाल पीता ताका है बिना
0: सत्य आप जाने ब्रह्मंत
1: के नए हो जाए बस मंत्र
0: कोट कर्म करे हो तारे
2: धर्म राय दिस करे सुहाए गुर प्रसाद जाका मिटे बिहार
1: सो जन नान दरगे पर
2: कोट कर्म करे हो तारे
1: चंपावे
2: अनित तपस्या करे अहंकार अनित तंत्र आत्म में रहे आपस को जो भला कावे सरब की रह जा का मन होए जब लग जाने मुझे कुछ होए
1: तब इसको सुखना ही कोए
2: जब जाने मैं कुछ करता।

0: आपे आपा प्रभु सोए
1: जो कुछ किन्नो सो अपने रंग
2: सते दो सब का संग
1: मुझे देखे करे बेबे
2: आपे का पे आने
1: मरण बिन से आवे न जा
2: नान सानी राज माए
1: आप देसे समझे
2: आपे रजा सके साथ
1: आप किन्नो अपन बिस्ता
2: सब पाछो का कन्ने हा
1: उसते बिन कहो किछो
2: तांत्रंतारे का सोए
1: अपने चलता

0: सांख्य दुखन मत होए मनी,
1: सांख्य दुखन सब आते हैं,
0: सांख्य हते को रखे न कोए,
1: सांख्य दुखन तान रस,
0: सांख्य पार कृपा जे करे,
1: नानक संग नहीं लगे,
0: सांख्य दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काल जे लवे,
0: संतन के दुखन सरब जोन पाए,
1: सांख्य दुखन त्रिगर जोन करवाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा मै जले,
1: सांख्य दुखन सबको चले,
0: सांख्य दुखन ते सब जाए,
1: सांख्य दुखन नीच निचाए,
0: संदो की का था को नाए,
1: नानक संग पावे तो विभेद पाए,
0: संत निंदक माताई,
1: संत
0: संत निंदक मा त्यारा,
1: संत निंदक परमेश्वर,
0: संत निंदक राज तहीन,
1: संत निंदक दुखिया,
0: संत निंदक को सर्व रोग,
1: संत निंदक को सदा,
0: संत की निंदा दोख में दो,
1: नानक संत पावे ता सावे,
0: संत का दोखी सदा पवित्र,
1: संत का दोखी किसे जाने,
0: संत के दोखी को दान लागे,
1: संत के दोखी को सब त्यागे,
0: संत का दोखी मांकारी,
1: संत का दोखी सदा,
0: संत का दोखी जन्मे मरे,
1: संत के दुख ना सकते,
0: संत के दोखी को ना ही था,
1: नानक संत पावे ता नहीं मिला,
0: संत का दोखी अज बीच टूटे,
1: संत का दोखी किते का नहीं भोजे,
0: संत के दोखी को ध्यान फरमाइए,
1: संत का दोखी उजड़ पाए,
0: संत का दोखी अंतर देत होता, संत के दोखी की जड़ किछ ना ए, संत के दोखी को वर न रखन हार, संत का दोखी ओम बिलाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, संत का दोखी छुटे अकेला, संत का दोखी धर्म तेरे,
1: संत का दोखी संत मिथ्या,
0: किरण निंदक कर तुरी पिया, संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दोखी को दरगाह मिले सदा,
0: संत का दोखी सदा सहकाइए,
1: संत का दोखी नाम रे ना जुवाइए,
0: संत के दोखी की पूजे ना आशा,
1: संत का दोखे चले निराशा,
0: संत के दोख न दृष्टे कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोए,
0: दया कीर्तन में टेकोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब गढ़

0: कांठ पर
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक बिगाना लागे कोए
1: स्तुत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे साध्य हार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा से ला काला जियो
1: मनो पेक्षा कर कारंग चरण चलो मार गोविंद कर हर कर्म स्वर्ण हर कथा
0: हाथ के नानक

0: सुन जिसका मन मानिया
1: नाने तेरे निरंजन जानिया
0: प्रसाद अपन आप सुजे
1: तिसके जानो ते स्वाब उजे
0: सास संग हर उसके
1: सारा रोते हर जन रहे
0: आन दिन कीर्तन केवल बखान
1: व्यस्त मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: तिसके कटिया जम के फासा
0: पार ब्रह्म की जिस मन पूर
1: नाने

0: जैसा सा तैसा दिखाया,
1: अपने कारज में आप समाया,
0: सोद सोद सोद सी
1: गुर प्रसाद दाता बुझिया, सबके मोल नानक जो सुखम सोया, तो
0: मैं किस जन्मे न किस मरे,
1: आप चलता अपने करे अमन जामन कृष्ण आज्ञा कारी धारी सा चेता, सगर में आप अनेक भगत आप अपना सीना ही किस दंड दा अलख पे पुरा पड़ता, जिन प्रजाता सु स्वभावंता प्रभु के सेवा सकल उदाहरण
0: आपे मिले कृपा,
1: गुर का शब्द भय निहार
0: उनकी सेवा सोई लगे,
1: जिसो के पाक रह बड़ पाक
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक ते प्रभु को तम कर
0: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग,
1: सदा सदा बसे
0: सहज भय होवे सोए
2: करने हर
0: प्रभु का किया जन मीठ लगाना,
1: ऐसा साता साध
0: जिस जिस पे
2: समाए
1: ओए सुख निदान

0: जा का नेत्र फूल
1: जिसका मंत्र जाने हो
0: अनुद्रु मंगल सजा के
1: शरत रोशनी गदा के
0: राज में राज जोग में जोगी
1: जाए
0: जाए पंते सुख पाया
1: नानक इस पुरा का।

0: नाना बिकर बन बनाई सब किसके सब चीज के ठाओ नाम के तारे सगले जन
1: नाम के
0: तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुरन ज्ञान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगल
0: नाम के तारे पुरिया सब भवन
1: नाम के संगते संतरा
0: कर की पाजी सपने नाम लाए
1: नानक ज्योते पद में सोजंगत पाए
0: रूप सज्जा का सत स्थान
1: और सत केवल प्रधान
0: कटू सत सज्जा की बाणी
1: सत पुरा समाय
0: सत कर्म जा की रचना सत
1: मूल सत सत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे ऐसा पले
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास नानक गुरुते पाए
0: सत वचन साधु उपदे
1: सत जन जाके हृदय पर
0: सत कीरत पूजे जे कोए
1: नाम जपता की गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपने मित गत
0: जिसकी शिष्य करने हा
1: अवना बोझ का त्रिचार
0: करते कि मित न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सोवती

0: सत सत सबधारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: दूजन हार को सत सब होए सच रूप दे जिन मान्या जहाँ के लिए विश्वास प्रभाया ऐसे निर्भो होए बसाना बस माए ले बस गड़ाई जे भूजन हार विवेक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर के सेवक के मन पर की
1: ठाकर के सेवक के निर्मारे
0: ठाकर को सेवक जाने संग
1: प्रभु का सेवक नाम तेरा
0: सेवक को प्रभु पालन हारा
1: सेवक के रखे निरंकारा
0: सो सेवक जी दया प्रभु तारे अपने जन का पर्दा ढाके
1: अपने सेवा के सर पर रखे
0: अपने दास को दे बढ़ाई
1: अपने
0: सेवक की आपत रखे प्रभु के सेवक को न पोचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया निकी कीरी मैं कल रखे जिसका साथ न काटता मानस

0: सिक्के गुरदुर मत माली रे
1: और बचने का नाम
0: सतगुरु जी के बंधन काटे
1: और कासे बिगाते आठ
0: सतगुरु जी को नाम तन दे
1: और कासे वर भागे
0: सतगुरु जी का हलत पलत सवारे
1: नाना सातों से को जी नाल समारे
0: गुरु के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में
0: आपस को कर किचन जनावे
1: हर हर नाम निदे सदगा
0: मन बेचे सतगुरु के पास
1: ते सेवा के कार राम
0: सेवा कर तो इन्हें कमी
1: प्राप्त
0: अपनी कृपा जिस आप करे
1: नाना सो सेवा।

0: पार ब्रह्म
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एके
1: आने न जाइए
0: नानक
1: सफल दर्शन पेकत पेटत संग्राम गुंडवे उनका भजन करण आगाने जाका मंत्र
0: हमें
1: कीमत नहीं पाए
0: एक पुरा
1: बाहु बोल न पोचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनेक भगत बंधन नित करे सत बलिहारी सतगुरु अपने ए हरस पावे जन कोए पुरट का नाही कदे विनाश
0: हाथ
1: पैर हर का नाम दे
0: वो
1: माया के संग न ले
0: मन में रखा हरा रे
1: अंधकार दीपक परगा से तपत माए ठाट वर्ताई
0: जन्म
1: मरण के मिटे अंधे से
0: साधु के पूरन उपदेश
1: हो चुका निर्भोए बसे जिसका साथिन कृपा तारी
0: सा जब नाम रारे।

0: गोविंद से पूर्ण
1: होए
0: अवनाशी
1: कौन का
0: विचार कहे जन साचा
1: चला मरा सौ का।

0: एको जापे को सलाहा
1: मारे को
0: एकस के गुनगा अनंत
1: मंता जाप है पावन
0: एको एके करा
1: पुरन पोर्य प्रभा
0: अनिक विस्तार एके पे
1: एक रात प्राण

भगत जनाथ के मंथन रंग एक बस दीजे कर्मयार ताकि उपमा कही न जाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल।

0: मैं हर के गुणगान
1: हो बुढ़ियाई
0: हर के नाम की कथा
1: वो भोजन का प्रसंगी
0: रसरा जते हरा
1: सुकर्णी शोभा तनवंत
0: पूरा मंत्र

0: आपन तब कहते हो
1: जब तारी आपन सुन समाद
0: बैर राह के सान समाद
1: जब इसका भरण चैन न जापत
0: जब
1: आपन आप पार ब्रह्म अपन खेर आप वर्ती जा जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक हर अगम पार जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए जब आपे आप अपनी जोत तरे अपन चरितप करने हार अपना सी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अभिघात गोचर प्रभ एका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे अपन आपा पिय चर जा यह निर्मल पूरक पूरक पत होता है यह निरंजन निरंकार निर्वाण यह स्वरूप केवल जगदीश स्वरूपी जो संग समावे करण करावन करने जब अपनी शोभा अपन संग बनाई यह सर्व

एक माया आपस को आपे आदेश एके एक एक भगवंता अपन आप पतियारा वो बयांत उचते ऊंचा या आप जो परपंच का।

0: जातिस पावे ता शिशु पाए
1: अपे पाले रहे समाए
0: तुमते पिन नहीं किछोए जाको प्रभु आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो सुंदर सी।

सो अंतर सो भाई अनंत धर्माया का पर्वत पार ब्रह्म कौन पानी बे संतर माए जिसे पिन नहीं कोठाओ सिमरत में देख वाणी प्रभु की सबको बोले सर्व कला करके देखो सर्व जो

नान जंत उपाय के संभाले सपना जिन करते ना किया चिंता वे करनेता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस ते